बात करेगा। तो ये आज सब जानते हैं कि सूरज जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और सन जैसे मूव हो रहा है पूरे गैलेक्सीज में हो रहे हैं। वह शम्सो तजरील मुस्तकर तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, सूरह यासीन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी तकवीर में भी खुदा ये बता रहा है कि ये जो रोशनी, ये जो जलाल है सूरज का, ये भी ख़त्म हो जाएगा, वो अपनी रोशनी को लिपेट लेगा। जब सूरज ख़त्म हो जाएगा तो उसके पहलू में क्या चिरागों का, जब असल ख़त्म हो गया तो चिराग कहाँ से बाकी रहेंगे। अब साइंस बताती है कि सूरज ही की वजह से चाँद में रोशनी है, सूरज ही की वजह से सितारों में रोशनी है, जितना भी दम है सूरज की वजह से, हत्ता पौधे भी उगते हैं तो ग्रोथ भी सूरज की वजह से है। तो कुरान ये कह रहा है ये सूरज जो इतना काम कर रहा है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आज साइंसदान कह रहे हैं कि एक बार 5-6 ईयर्स पहले यहाँ पर आपको वैंकूवर में दुनिया भर के साइंटिस्ट जमा हुए थे, तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि आई हैव ए गुड न्यूज़ आई हैव ए बैड न्यूज़। सुबह ने कहा पहले बैड न्यूज़ बता दो, कहा कि ये दुनिया ख़त्म हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये दुनिया रहने वाली नहीं है। कुरान ने पहले कह दिया कुल्लु मन अलैहा फान, सब ख़त्म होने वाला, कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि जल्दी नहीं है, फौरन ही नहीं है, मगर ये होने वाला, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसीलिए मौला ने फरमाया जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन मौत का तीर निकल गया, यानी तुम्हारी पैदाइश ही मौत की खबर है। तो ये नामुमकिन है कि पैदा हो और मौत ना आए, इम्कान ही नहीं है। इसी तरह से अगर यूनिवर्स खल की गई है उसका खात्मा ना हो नामुमकिन है। फला अक्सिमु बिलखुन्नस, यानी मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह कह रहा है, पसे पर्दा जाने वाले सितारों की। वल जवारिल, जवार कहते हैं जो पड़ोसी, जो कुन्नस यानी सूरज से मरबूत जितने सितारे हैं सभी। वल्लैल इदा असअस वस्सुबह इदा तनफ्फस, बाज़ ऐसी ताबीरें हैं जिसका तर्जुमा, जिसका समझाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे दुआ सुबह मैंने गुज़श्ता में बता रहा या मन दलाल लसान सबाह बे नुत्क तबल्लुज, जवाब नहीं है इसका कोई, ये जुमला जो है समझ नहीं पाते कि अल्लाह कह रहा है कि मौला फरमा रहे हैं कि ये सुबह जो हो रही है इसको अल्लाह ने ज़बान दी है, ये ज़बान है सुबह से। हदीस में है कि हर रोज़ सुबह ये कहती है आवाज़ देकर के, मैं पहला दिन निकल रहा हूँ, फिर निकलने वाला नहीं हूँ, और मैं तुम्हारा गवाह हूँ जो तुम कर रहे हो, आई एम विटनेसिंग एवरीथिंग, और फिर उस गवाही को मैं दूंगा जो तुम्हारे आमाल है। ये हर रोज़ सुबह की आवाज़ है। यहाँ पर भी कुरान कह रहा है कि रात बहुत गहरी होगी और सुबह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी, पोप उठने लगेंगे। इन्नहु लकौल रसूलिन करीम दी कुव्वतिन इंदा दिल अर्श मकीन मुताइन थुम्मा अमीन। मैं सिर्फ आज जो बहस करूँगा इस पर है, इन्नहु लकौल रसूलिन करीम, यहाँ पर रसूल से मुराद सरकार नहीं है, यहाँ से रसूल से मुराद हज़रत जिब्राइल हैं, पहुँचाने वाला, मैसेज को पहुँचाने वाला। रसूल करीम, लफ्ज़ करामत पे गुफ्तगु है आज हमारी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला वाजिल फरज। बहुत अच्छी तरह से मौजू ए क़ुरान क्या है, वॉट इज़ द टॉपिक ऑफ द कुरान, बहस है मुफसरीन में कुरान का टॉपिक क्या है, मौजू क्या है। इसलिए कि हर एक इल्म का एक टॉपिक होता है। अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पर मेडिक्स जो है, मेडिकल जो है टॉपिक है, मेडिसिन टॉपिक है। अगर कोई IIT की यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ का टॉपिक IIT है। तो कुरान अगर किताब है तो इसका टॉपिक क्या है, इस बहस को आयतुल्लाह जवाद आमोली ने अपनी तफसीर तस्नीम में बहुत ही खूबसूरत बयान किया है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ रहिए, एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह।

तावील, ताबीर अलग है, तावील अलग। ताबीर किसी ख्वाब को इंटरप्रेट करना कहते हैं। तावील ख्वाब जो है हकीकत से बदल जाए। बचपने से जब बचपने में जो ख्वाब देखा था हज़रत यूसुफ़ ने, वो ख्वाब तावील में बदला कि जो ख्वाब था ख्वाब ही नहीं रहा, हकीकत में सामने आया। माँ बाप भी और 11 भाई ने सजदा किया। हाजा तावील और रुया, बाबा ये जो है तावील है जो ख्वाब ज़ाते परवरदिगार ने दिखाया था। अब किसके हाथ में बादशाहत आ गई? साथ हजरत यूसुफ के हाथ में। और मगलूब कौन हो गए? क्या करना चाहिए जी? इतनी कुदरत के बाद जज्बा लेना चाहिए, मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। बहुत ही सबक लेके जाइए। हम लोगों के दोष घर में, घरों में भी हमारे बहनों से भाइयों से ज़रा सा थोड़ी सी चपकलिश हो जाती है, हम सूरत नहीं देखना चाहते, हमारी मैयत में मत आओ, ये हो वो हो, हम लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं। ये अजीब व गरीब है, 36 साल भाइयों ने दुश्मनी की और जब भाई वापस पलट कर आ गए तो एक जुमला कहा, ला तस्रीबल यौम, आज बदले का दिन नहीं है। तो हदीस में है, अगर हुकूमत तुम्हें मिल जाए उसका कफारा यही है कि तुम मजलूम को भुला दो, गैर को, दुश्मन को भी बख्श दो। अगर तुम्हारे पास हुकूमत आ जाए तो गैर को। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का के बाद जब दाखिल हुए तो सारे लोग ये समझ रहे थे यौमुल मलहमा, बल्कि सारे असहाब तो जंग के मैदान में तो लड़ते नहीं थे, यहाँ तो करीब आकर के लड़ रहे थे, यौमुल मलहमा यौमुल मलहमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है या बदले का दिन। हाँ, सरकार ने कहा बदलो, स्लोगन बदलो, यौमुल मरहमा यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, बदले का दिन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह। तो इंसान ये करामत को ले जाता है कब्र में, आखिरत में, अपनी ज़िंदगी में। वो करामत क्या है? लकद करमना बनी आदम व हमल्लाहुम फिल बर वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फद्दल्लाहु अला कसीरन मिम्मन फद्दल्ला तफदीला। सूरह इसरा की 70 आयत है, बहुत मशहूर आयत। हमने इंसान को इंसान क्यों कहा है? उसमें करामत है, उसमें ये जज्बा है, वो दुश्मनी ग्रेजस को नहीं रखता, वो ग्रेजस को भुला देता है। जितना ईमान आगे बढ़ता है उतना ही वो वसी उल कल्ब होता चला जाता है, वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है, वो बड़े बड़े मकासद की तरफ उसकी निगाह होती है। उम्मीद है कि हमारी एज ए कम्युनिटी हम लोग छोटी छोटी बातों में ना उलझें बल्कि बड़े मकसद की तरफ तवज्जो करें। बड़ा मकसद है इमाम के आने की तैयारी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह। आली मोहम्मद वाजिल फरज। जंगों को जानते हैं, सेकेंड हिजरी से लेकर 8 हिजरी तक 86 माइनर और मेजर वार्स हुए हैं और पूरे के पूरे इस्लाम ने डिफेंसिव वार किए हैं, अफेंस नहीं किया। और ये डिफेंस का जो बजट दुनिया बताती है वो इस्लाम का दिया हुआ है, हालांकि अफेंस करते हैं फिर भी डिफेंस कहते हैं। डिफेंस डिफेंसिव वार्स। एक मरतबा एक शख्स सरकार जंग के मैदान में थोड़ा सा सुस्ताने के लिए दरख्त के करीब आराम कर रहे थे। दुश्मन सफ़ों को चीरता हुआ हाथ में तलवार लेकर के सरकार के सर पे पड़ गया। मोहम्मद उठ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم। देखा सामने तलवार है, दुश्मन है, कोई रास्ता नहीं है फरार होने का। कहता कि अब कौन तुझे बचा सकता है? सरकार ने आंख में आंख लगा के कहा, वही जो अब तक बचाता रहा। जी वही बचाएगा जो अब तक बचाता रहा। काम जाता इस जवाब के साथ, तलवार गिरती है हाथ से और सरकार हाथ में तलवार लेते हैं। अब बता कौन बचाएगा? सरकार के हाथ में है तलवार, है दुश्मन सामने है जो मारने के लिए आया था। उसका जवाब सुनिए, वो कहेगा मुझे तेरे करामत नफ्स बचाएगी। हाय हाय हाय, तू इतना करीम है कि तू बेगुनाहों को मारता। सलावत पढ़िए मोहम्मद।

बाद जब भी पानी आता था इतना क्रिया करते थे कि पानी मुजाफ में तब्दील हो जाता था, पानी को फेंक दिया जाता था। मिनहाल कहते हैं करबला के बाद हम गए पुरसा देने के लिए, हम भी किसी को सुनते हैं तो जाते हैं पुरसा देने के लिए। आज भी बैठे हुए बरसी की मजलिस है, उनके बच्चों को पुरसा देने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके मरहूमिन को बख्श दे। मिनहाल कहते हैं कि मैं मौला से मिलने के लिए गया, जब बैतुल शरफ के करीब पहुँचा तो देखा कि परनाले से पानी गिर रहा। मैंने अबा को समेटा, किसी ने कहा मिनहाल ये पानी नहीं है, तेरा मौला रो रहा। ताज्जुब हुआ मिनहाल को, कैसे मुमकिन है कि इंसान गिरिया करे और परनाले से पानी निकले बाहर। ऊपर जब पहुंचा तो क्या देखा, सामने वजू के लिए पानी है। मौला बे इख्तियार रो रहे हैं, इतना गिरिया किया कि वजू का पानी बन गया मुजाफ, मौला ने फेंका। सलाम करके बैठ गए मिनहाल। जुमला का मौला कब तक रोइएगा? मौला कब तक रोइएगा? मौला ने पहलू बदला, कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा जुदा हुआ था, जानते थे कि जिंदा है, मगर इतना गिरिया किया। वबयदत अइना, कुरान ये कहता है कि उनकी आंखें सफेद हो गई थी। मिनहाल मेरे सामने मेरा पूरा घर बर्बाद हो मिनहाल रोते हैं रोते हैं रोते हैं, फिर भी चाहते हैं मौला को तसल्ली के जुमले कहें। क्या कहने इन बुजुर्गों के जो इमाम को तसल्ली देते हैं। एक मर्तबा का मौला, मैंने सुना है आपके घराने में कि शहादत शरफ है, शहादत इज्जत है। मौला पहलू बदले, शहादत शरफ है, लेकिन माँ बहनों का माँ बहनों का। इसीलिए जब कभी पूछा जाता था करबला को याद नहीं करते थे, ये कहते थे अश्शाम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल्ला अरवाहिल्लती हल्लत बेफनाइक व अनाखत बेरहलक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बकीतु व बकिया लैल व नहार। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين।